0: दिल चीर कर सामने रख देंगे।
1: पहले मुझे इस तक पहुंचना है।
0: और इस तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा।
1: कहां?
0: मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते। आओ, कम इन।
1: किरण, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे पीके तक ले जाओगी। ये तुम मुझे कहां?
0: मैंने कहा था ना, मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते।
1: ये
0: जवाब मिल गया।
1: किरण, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा।
0: अंजाम?

0: खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?
3: वाइट ओ

0: खुशियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: ओ महाराज।
0: यस
1: योगी।
0: दैट्स राइट।
1: वेलकम।
0: थैंक यू।
1: स्वागत है